तुझ बिन सुरत कर को मेरी दर्शन दीजे खोल किवाड़ दर्शन प्यासी दिन सरात चितमो वन दिन नीत

इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तिना सो ऐसा हर त्याई मेरे जी अड़े

0: गोविंद
1: आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध
0: आखे दानव आखे देव आखे सुनर मुंजन सेव
1: किते आखे अखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे
0: किते किते होर करहे ता आख न सके के
1: जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए
0: को आखे बोल बिगाड़ ता लिखे सिरगा वारा गावार
1: सुधर के आसो करके आजित

0: परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश अंग रंग नरंग जाक जात पात न नाम
1: दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूत
1: सर्व भंजन आदि रूप असूत
0: अंगीन भंग नाथ मेक पुरख पार
1: सर्व गायक सर्व को प्रतपार
0: सर्व गंता सर्व अंता सर्व

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है।
1: सत के तरना जग के करना मन माने जग जानिया
0: है। सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वस्य है, सर्वनाश्य है।
1: करुणा कर है, बेसंबर है, सुरवेश्वर है, जगतेश्वर है।
0: परते पर है, करना कर है।
1: अजपा जप थपा थपा कृता कृता।

0: जापन है।
1: अकलंक करता है, सर्वा करता है, कर्ता कर है, अर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग पयात शंद।
1: नमो सूर सूर।

0: नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अकंजल नामे समस्तुल निवासे
1: कामंग भूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सधर्मंग भूते
0: सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करमिंदा समस्तुल निवासी।

0: स्वरूप
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग रो
0: अट पटे पाता सकल मलेश करो रणकाता
1: जे अस्तुर तब सरणी।

0: जग तू पाया,
1: कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया।
0: सुर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्ने सच्चा मन वसाया।
0: जी जंत सब तुदु पाए, एक वेक परसन आया।
1: लाभ लोभ अहंकार चुका, सतगुरु भला पाया।
0: कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया।
1: की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना।
0: लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना।
1: अन्यो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिनी आप तज्या, हर वासना सुवाणी।
1: कह नानक चाल भगता।

0: कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: कहे नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवे चलावहे।
0: एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया।
1: एहो तिन कह मन वसिया जिन तुरु लिखिया आया।
0: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली कने ना पाया।
1: कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया।
0: पवित होए से जना जिनी हर त्याया।
1: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया।
0: पवित माता पिता कुटुंब सहत सियो पवित संगत सबैया।
1: कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया।
0: कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।
1: करमी सहज न उपजै बिन सहजे सहसा न जाए।
0: जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए।
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए।
0: मन तो बहु शब्द लागो हरस्यो रहो चित लाए।
1: कहे नार गुरु प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।
0: जियो मैले बाहरों निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हरे।

साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुख उजल हो तो साध संग मल सगली खो तो साधक संग मिटे अभिमान हो साधक संग प्रगटे सो ज्ञान हो साधक संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सबोतन मेरा साधक संग पाए नाम रतनो साधक संग एक ऊपर जतनो साधक महिमा वर्णन कौन प्राणी नानक साधक शोभा प्रमाण समाणी साधक संग गोचर मिले साधक संग सदा प्रफुलै साधक संगा वैबस पंचा सा संग अमृतरस पुंचा सा संग सब की रेण साधक संग मनोर बैन साधक संग न कतू धावै सा संग सत मन पावै साधक संग मायत भिन्न सा संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सा संग दुश्मन समीत साधक संग मां पनीत सा संग किस नि बैर साधक संग न बिग पैर साधक संग नाई को मंदा सा संग जाने परमानंदा साधक संग नाही औ ताप साधक संग तजै सबे।

ब्रह्म ज्ञानी हो अस्पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सुसर्ग को सोख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राय रंग कुला के तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे कहो जो वसुदा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुना आओ रंग जो भाव कैसा स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश जैसे तारु प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ऊंचा मन अपने सत्य नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नान गिन प्रभाप करे ब्रह्म ज्ञानी सल किरीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैं ब्रह्म ज्ञानी तिकज पुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्त ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी के ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेदता ब्रह्म ज्ञानी एक संगता ब्रह्म ज्ञानी के अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी के दस बट भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान के सकल मन माए ब्रह्म ज्ञान का कौन जानना है भेद ब्रह्म ज्ञान को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे ना जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी के सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उर तहर है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानको परस सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्री निरंजन दर्श परत रूप न पेख नेत्र साधिक जल संसंग हेत करना सुने काऊँ की निंदा सबसे जने आपको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हराया मन की बास न मन थे टराय इंद्री जित पंच दोग ते रहत नानकूट मदे को ऐसा अपरस बैसनो सोजी सुपर सो प्रसन्न बिसन की मायत है पैन कर्म कर तो वह ने कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काऊ फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल

काऊ फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल साबु प्रभुत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावै नानको बैसन परम गत पावै भगवती भगवंत भगत करंग सगल त्याग दुष्ट संग मंत्र बिंस सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साह संग पापा मल खोवै तुस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टाल करे नित नीत मंत्र नरपै बिसन प्रीत अर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोध दया राम नाम तम मैं सो दया राम नाम सार रस पी वै उस पंडित के उपदेश जी वैर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो ना आवै वेद पुराण सिमरत बुझे मूल सुख मैं जाने अस्थूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देस बीज मंत्र सबको ज्ञान चौवरना में जपे को ना को नाम जो जपे तिसकी गत होए सार संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारे सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काउ जुगत कितें न पाईए धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन भयतन पाया सदा निट निट अर्जान सो दास दर गया प्रवान अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै सकल संगत मोह दास अस युक्त नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तमहितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा अर्क तैसा सोग सदन ते नहीं ब्योग तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई युक्त नानक को पुरख ये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख तैसा तिन्नाओ आपे करन करावन जोग प्रपावै सोई भोग पसरु आप अंतरंग लखन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश

0: बहुविधि अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कुड़ वेद के स्रोत है, कई कुड़ तपेश्वर होते है, कई कुड़ आत्म ध्यानता है, कई कुड़ कब का विचार है, कई कुड़ नव तन अंत आवे, नानक करते कंत न पावे, कई कुड़ भय मानी, कई कुड़ अंध ज्ञानी, कई कुड़ कृपण कठोर, कई कुड़ अभिज्ञा तम निकोर, कई कुड़ पर द्रव को हिराए, कई कुड़ पर दुख न करे, कई कुड़ माया शरमाए, कई कुड़ परदे शरमाए, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कुड़ से जति जोगी, कई कुड़ राजे दस भोगी, कई कुड़ पंगी सर्व पाए, कई कुड़ पात्र भिक्षण भजाए, कई कुड़ पुण बणी बैसंतरे, कई कुड़ दे सुमंडल, कई कुड़ से सिर सुरण खेतरे, कई कुड़ देव धनंजर सुर छात्र, सगल समग्री अपने सुतारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे, कई कुड़ राजस्थान सातक, कई कुड़ वेद पुराण समृत सासत, कई कुड़ कीर्तन संबंध, कई कुड़ नाना प्रकार जंत, कई कुड़ के चर जीवै, कई कुड़ गिरी में स्वर्ण थीवै, कई कुड़ जग निरपिशाच, कई कुड़ भूत प्रै सुकर मिर्गा, सब ते नेरै सब हुते दूर, नानक अलिप त्रै भरपूर, कई कुड़ पाताल के वासी, कई कुड़ नरक निवासी, कई कुड़

गर्भ गणेश भाई, जिसके अंदर राजमानसो नर पाति हो सो आंचो जाने में जो बनवानसो तो विस्ता का जन आप उसको करवंद कहा है। जन्म मरे भोजन परमावे तन भू का जो करे कुमान सो मूर्खंदा गया कर कृपा जिसके हृदय गिरि विसावे नानक की मुक्ता के सुख पावे तन मंतावे कर करवावे तन स्वाम का संग न जावे बहुल कर्मान को बरकरे आस पल पितरता का विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हो जाए पसमन किसी ने बदे आपकारी धर्म राय ते कर कुवारी गुरु प्रसाद जाकर मुठे मान सो जन नानक दुर्गे प्रवान कोड कर्म करे उतारे शरम पावे सगले विरथारे तपस्या करे कार नरक सुर फिर फिरे अवतार अणुक जतन करे आ तुन दरवे हर दरगे कैसे गावे आपस को जो भला कहावे तिसे भुलाए निकनाव सर्वग्रहण जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ होए तब उसको सुखना ही कोय जावे जाने मैं कुछ करता तब लग करब जुन मैं फिरता जब तारे को बैरी में ताल होने चलना ही चेत जब लग मोह मगन समाए तब लग तन हृदय सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानको सूटे सहस कटेला कुड़ता हुए त्रुप्त न आवे माया पाचे पावन को क्या के करे न त्रुप्त आवे कब कब मरे बिना संतोख नहीं कुरा जी सुपन मुहूर्त फिरते सबका जी नाम रंग सर्व सुखो बड़भागी सी प्राप्त हो करण ग्राम ने आप सदा सदा नान कर जाओ करण ग्राम करण यार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट के दास आया पे आप प्रभ सो जो कुछ गिन स्वप्न रंग सब ते दूर सब के संग बुझ देखे कर वे क्या पे क्या पे अनेक मरण बिन से आवन जाए नानक सदी रे समाए आबू जैसे समझे आप आपे रचा सबके साथ आप किन वपन विस्तार सब का जुक करण हार उससे भिन्न कहो कुछ होए थान तनंत है कह सोए अपने चल तब करण हार कहो ते कर रंग अफार मन में आपन अपनी माए नानी कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद ने वख्या सच सच सत सबकी ना कोट मदे किन बिरड़े जीना भला भला भला तरूप है सुंदर अपारणो निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घड़कर सुनी सरमुख आनी पुत्र पुत्र पुत्र पुनीत नाम जप नानक मन पी सलोक संत शरण जो जन पर सुजन उदरण हार संत के निंदा नानिका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुखन यार जगटे संत के दुखन जमते नहीं छूटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन रखम पाए संत के दुखन मत होए मिलीन संत के दुखन सो बाते हीन संत के तक रखन कोय संत के दुखन दान पुरुष होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक पीता रहे संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग झोलोवे संतन के दुखन सर्व जन पाए संत के दुखन त्रिकृत जन कृमाए संतन के दुखन तिसना मजल है संत के दुखन सब को छले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीचन जाए संत दुखी खाता अपनाए नानक संत भावे तुम भी गद पाए संत कनंद कुमार ताई संत कनंद कंटक न पाए संत कनंद कुमार ते आरा संत गुर परमेश्वर मारा संत कनंद दुखी राज तेन संत कनंद दुखी अरदीन संत कनंद को सर्व रोग संत कनंद को सदा जोग संत कनिंदा दुख में दुख नानक संत भावे तुम सुखा भी हो मोख संत का दुखी सब संत का दुखी किसी का निमित संत के दुखी को डन लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी मांगकारी संत का दुखी स्वीकार संत का दुखी जन्म में मरे संत के दुख न सुख ते टरे संत के दुखी को निठाव नानक संत भाव तले मिलाए संत का दुखी आज भी टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत का दुखी को ध्यान फरमाए संत का दुखी जड़ पाए संत का दुखी अंतर ते सोता जो सास न मृत की लोता संत के दुखी जड़ किसी ना आया अपन बीजा पे खाए संत के दुखी कवन राख नार नानक संत भाव तले उभार संत का दुखी बिल लाए जो जल भी नु मतली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो भाव गिदने त्रापे संत का दुखी छुड़े केला जो वाट लिखे तुम्हें जोहेला संत का दुखी धर्म धरा ते संत का दुख समझ कहते

सो सों सुला नहीं डुलावे, जिस पर अपना कृपा करे सो सेव को किस से डरे। जैसा सा तैसा दिशा अपने कर्म में आप समाया, सोद सोद सोद सीधिया गुरु प्रसाद सब बुझया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोया सोल, ना कि जन्मे ना कि मरे अपन चलते आप ही करे। आम जाम दृष्टन दृष्ट अग्ञ कारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मै आप अनुज रही था बुधा। अवनाशी नाई किस खंड, धारण धार ब्रह्मांड अलख पे पुर प्रताप, आप जपाय नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो सुभावंत, सकल संसार उदय तिन मंत, प्रभु के सेवक सब उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख सार। आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जपे, निहाल उनकी सेवा सोई लग, जिन कृपा करे उड़ भाग। नाम जब पा विश्राम, नानक तिन प्रभु को तुम कर मान, जो कुछ करे सो प्रभु के रंग सदा।

राम नाम संतन कर पायो ताज मान ले मन मोल राम नाम हृदय में तो लात के संदा संचालय और त्याग के जिन जाल तन तन कैसो को है मुख जल दर कैसो है ये वपार बिरला वपार है नानक ता के सद बिलहार है चरण साध के तो इते भी अर्भ साध को अपना जियो साधक दूर करो स्नान साधु प्रजय कुर्बान साध सुबड़ भागी भाई साध संगर कीर्तन गाय अणक बिगंते साधु राके अर्पण गए मृत रचा के उड़ के संत दरिया सरो सो नानक ते भा सलो स्मृत मृत्यु को जीवालन हार भुखे को देव दधार सवन धान जा की दृष्टि माए पुरुल के काले न पाए सब की जिसका उपकरण जोग तिस बंधु सरोवन होग जब जन सदा सदा दिन रहनी सब तो निर्मल करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक से जन निर्मल थी जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर पचीत भगत भग सुनिय तै लोए जा के हृदय को होए सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सदमुख कैद सच हृदय सच आकार सच वरते सच पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रै गुंते प्रभिन्न तिसे भुजाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न स्वय अवनासी ब्रह्मन में राग मानु की तूरी त्याग तिसे प्रेरणे कुछ को सर्व निरंतर एक सोय आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर कही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर को बिंद कृपा ध्यान जल

मंत्र जाने हो रहे ध्रुव मंगल साजा के सर सोगनी कर था राज में राज योग में जोगी तब में तभी सर किस में भोगी तय तय भक्त सुख पाया नानक तो इस प्रकार अग्नि अंतर भाया जाखी लीला की बिंदना सकल देव हरे गाय पिता के जन्म के जाने पूत सकल पुरो ही अपने सूत सुमत ज्ञान थे अंजिंदे जनदास नाम थे आवे स तय कुण में जाको ब्रह्माए जन्म मेरे फिरे आवे जाए ऊच नहीं जिसके स्थान है जा सजनावे तासा नानक ज्ञान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे करे करंग नाना विदिन विसारे प्रभु नसी कंकार नाम चल करे किन माए पूरे पूर्ण सबडाए नाना विद करवण बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब कर दिसके सब दिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हरण आओ नाम कधारे सगले जनते नाम कधारे खण ब्रह्मांड नाम कधारे समृत भेद पुराण नाम कधारे सुनन के अंत्या नाम कधारे घास पताल नाम कधारे सगले कार नाम कधारे पुरे सफाओ नाम के समुद्र संसरण कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सजन कत पाए रूप सत जाकर सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतू सत सा की बाणी सतपुरख समाय समाणी सतकर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पात सतकर्णी निर्मल निर्मल जिसव जाते फल सत नाम ब्रह्म का सुखदाय विश्वास सत नाम कुरते पाए सतभुन सत उदय सत तेजा कृत प्रोय सत नृत भुज कोय नाम जो हकीकत होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गाते जिसके सिर सो करण हार रावण बूझ करत विचार करते कि मित ना जाने की आ नानक ज्योतिष भावे सो वरती आ विस्म विस्म वै विस्माद जिन पूजा ते सह स्वाद प्रभु के रंगराज जन रहे गुरु के विजम दार्थ ले दाते जो काटना अर्जन के संग तरे संसार जन का सेवक सोड़ भागी जन के संग लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नान खुल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है फे सच नानक हो सिव सच अष्टपदी चरण सत सत वर्षन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखनार नाम सत सत आवनहार आप सत सत सवधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभुगता सुरत सत सत जसुंता पूजन हार को सत सब होए नानक सत सत सब सत प्रभु सोए सत सुरुद जनमानिया करण क्रम जन मूल पछाणिया जाके हृदय विश्वास प्रवै तत् ज्ञान तस्मान भगड़ाया पै ते निर्भो विसाना जिस मैं समाना वस्तमाय ने वकड़ाए ता को भिन्न कहना जाए बूझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक ठाकुर का सेवका क्या करी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रति ठाकुर के सेवक ने मरे ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवक प्रभु पाल नारा सेवक की राख निकार सो सेवक जे प्रभु तारे नानक सो सेवक साथ साथ सुमारे अपने जन का परदा टाके अपने सेवक दर राख अपने दास को देव डाय अपने सेवक को नाम सुपाई अपने सेवक की अवध राखे ताकि कर्म से कोई न लाख प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक को इते उचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दास जिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राखे भसम करे लश्कर को लाखे जिसका शासन करत है अवता को राख देकर हाथ मानु जतन करत बात जिसके करत बिरथे जात मारण राखे अवरण कोय सर्व जिया का राखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जब नान गुरु वड़ख विड़ानी बारंबार बार बोझ पिए पिए मृत्य मन तंत्र पिए नाम तन जिन गुणों को पाया तिसके शव नहीं दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का संग नाम राज जो जन त्रिवदाने मन तन नाम में नाम सुमाने उठ बैठ सोत नाम को नंग जन के सदगा बोलो जह जे बादन रात प्रभु जन की नींदात करे भक्त आत्म के जाए प्रभु ने सो रह समाए जो हो आव सो जाने प्रभु ने कहू पहुंचाने देश की मैं कौन बुखाना तुझका गुण कह जाल आठ भर पर सहजूर है कौन अंशीन पूरे मन मेरे दिन की ओर ले मंथन अपना दिन जन दे जिन जन अपना प्रभु शाता सुजन सर्व को दो कह दाता जिकी शरण सर्व सुख भाव तिसके दर सब भाव मिठावे और से अनुसगली चाड़ती जन कुछ से वाला गया हूं जन हुई तेरा नानक तिस जन के पूजो सद फल सलोक सतपुरख जन जाने सतगुर तिसका नाम तिस गै संघ सिख उदरे नान नानक तिस गै ना तिसके संघ उदरे सिख उदरे नानक हर गुण गाव पौड़ सतगुरु सिखी करे प्रतवास को गुरु सदा दया सिखी गुरु दुरमत मिले रहे गुरु वचन हर नाम चरे सतगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते हटे सतगुरु सिख को नाम दान दे गुरु का सिख उठ भागी है सतगुरु सिख अल पल सवारे नानक सतगुरु सिख को जी नाल सुमारे गुरु के ग्रह सेव जो रहे गुरु की आज्ञा मन मसाए
आप उसको कर कुछ न्यावे हर नाम जैसा त्यावे मन बेचे सतगुरु के पास से सेव के कार्य रास सेवा करते हुए नेका मित इसको उत्प्राप स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गा जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नावन कबार गुरु को बल जा सर्वधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार में कह अपने किश परम सहस्याण बलैण जाई नानक ऐसा गुरु भागी पाई सफल दर्शन भेगत पुणी पर सचन कृष्ण मरीज भेट संग्राम गुण नवे फार मुंगी दर गए सुनकर बतन करण अखा नेमत संतोख आत्म त्यान पूरा गुरु अख्यो जाका मंत्र अमृतिष्ठ पे कह संते गुण बेंद किमित नहीं पाए नानक जिस भाव जी ले मिलाए जिह बाय कुस्तत अनेक सतगुरु पूर्ण बवे काउ बोल न पोज प्राणी गुंगोचर बण निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायिता की कीमत किमि न पाई अनुप भगत बंधन करे चरण कुण हृदय सिमराय सतबुल हरि सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु अपने हर स्वावे जन को अमृत भी विमरसो है उस पुर का नाई कदे बिना जाके मन भगटे गुणता से आठ पैर हर का नाम ले सत उपदेश को दे मुंह माया के संग ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीप प्रगा से नानक परम हो दुख दाते नासे तब तुम्हारे ठंड वरताए नया दुख नाटे भाई जन मरण के मिटे देश साधु के पूर्ण उपदेश पौ चुका निर्भय बस सकल व्याज मनते कह न से जिसका साधन कृपा धारी सासंग जप नाम मुराद तिथि भाई चुके भ्रम का मन सुन नानक हर हर जस सरुण निर्गुण आप सरगुण पियो कला धारी सगड़ी मोह अपने जरपन आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा ना ही को सरण ग्रंत को सोए बोत बोध रया रुबरंगी भय प्रगा साध के सांगी रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साधन जल बिन भजन विखिया सगली सार हर हर नाम कुमा नानक तन सार अस्पति संजन मिलकुल विचार एक सिमरना उधार रूपा स्वामी सार चरण कमर थार कारण कारण सुबर सम्राथ दृढ़ कर गहु नाम हर वाते तन संचो भगवंत संजन का निर्मल मानते एक आसरा कुमन माय सर्व रोग नानक मिल जाए जिस तन को चार गुण उठता है सो तन हर सेवा ते भाव है जिस गुण इस बात से मेरी सो सुख साधु संपरी जिस सुबह को करे फल करनी साधु बजर की चरणी अणगु वाय रोग न जाए रोग डे हरा कुतलाए सर्वण धान में हर नाम धान जब नानक दर के प्रवाहन मन प्रभु द्वार के नाय दादे दाव ते आवे ठाए ताको विघ्न लागे कोई जा कर देव से हर सोए कल ताती ठंडा हर ना हो सिमर सिमर सदा सुख भाव पवन से भूमि आस भगत भाया संभव गास इस घर जाए बसे अवनासी को नानक काटी जम फांसी सत विचार कह साचा जिन मरे सो का चो काचा आवा गुण मिटी प्रभु से व्याप ते अक्षण गुरु दे अमृतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण धार अनुक भावन छूट नर सिमर सस वे विचारे हर की बात करो मन लाए मन वंशद नानक खुलवाए सांगण चालस देरी धना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुतमित गुरु बरवंता इंत गुण तुम गुण सुनाथा राज रंग मैं विस्तार इंते गौ गुण छुटकारा सह सिर सुसारी झूठा डम छूटवा सारी जिन दिए तिस भुजन विगाना ना विसार नाम कुसाना गुर की मातु ले आने भगत बिना बोडू बे सियाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माए जन्म जन्म के कलुख जाए आप जपो अब नाम जपाओ सुनत कैद रैत गद फाओ सार पूज दर गुण आओ सह सवाय नानक गुण गाओ त्रि त्रि समैल बिन जाय मे खैल हो चंद बस सुगुणाल सात ग्रह सर नाम समाल चार से अनु सगली मना सात सं पावे साई जान हर पूंजी संज करो बिहारियां सुख द्रग जयकार सन निरंतर एको दे कहो नानक जाके मसगले एको जाप एको साला एक सिमर एक मुण आय कसके गुण गाव अनंत मन तन जाप एक भगवंत है एको एक एक रा पूर्ण पूर प्रभु विस्तार एक ते वे एक रात प्राचित गए मंत्र अंतरिक प्रभु रात गुरु प्रसाद नानक जाता स्लोक फिर फिर प्रभ आया

आय नान भक्ति नाम सुमाय सो को श्री कर न बने सो को श्री जी की जाने सो को श्री सब को दिया सो को श्री जीवन जिया सो को श्री अग्नि में राखे गुरु प्रसाद को विला लाखे सो क्यों विसरे जे विकते काटे जन्म जन्म का टूटा काटे गुरपुरे ताते बजाय प्रभु अपन नाम जनते आए साजन संत गुरु हे काम अंत अग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख भाव आप जपो प्रणाम जपाव भगत पात्र संसार बिन भक्ति धनो सी सार सब कल्याण सुख नित नाम बूढ़े।

सदानाम तुमरी शरण प्रभु भगवान सर्वभा गुण मुख मुखा एक मुखर के गुण गाय अनुग्राज भोगे आय हर के नाम के गदाम पाए भो भोजन का प्रसंगी दर्शन ते हर हरि भली सो करणी सो बात नंत हृदय से पूर्ण गुरु मंत्र सा संप्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास।

जय निरंजन का निर्वाण है कौन कुमान कुमान जय सहयोग स्वरूप कै जो जय जो सुरभि जो समुदय समावे तय कस कमूकम त्रिवतावे करण करावन करण यार नानक करते गण समार जय अपनी शोभा अपन संग मनाए ता कौन माए भवित्र सुभाई जन सब कलापे प्रवीणता व्यक्त कहाँ कोचे जावे अपने आप अवतारे तो सगन सग का विचारे जा अपने आप ऊचने आप अपने ऊंचे अपने नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही चेरा विस्मन विस्म रह विस्माद नानक अपनी का जन भाव जा चल चे बे समाय से व्याप समाय अब उसको अपेदेश तय गुण का नहीं प्रवेश जय के भुवंता तय कौन अचिंत कुछ लागे चिंता तय अपने आप अप थे यार तय कौन कथे कौन सुन यार भव बेअंत ऊंचे ऊंचा नानक आप उसको अप बहुचा जय प्रचय प्रपंचकार तय गुण मैं किन्नु विस्तार पाप पुंत पई कावत को नर को स्वरूप सावत हल जाल मय जंजाल हम मुह परम पै पार दुख सुख मान कौन कर कर क्यों ख्यान आपन खेल आप कर देखा खेल संकोच के जब भगत आप जय श्री पासार संप्रताप धूम पाक आपे तनि उनकी सुबाण हूँ बणी आपे कुद करें चो जया पे रस भगने जोग जिस भाव तु ले लड़ा जिस भाव जी अपना लावे जिस भाव तु खेल खिलावे बेशुमार थाक ने तो तोले ज्यो बुलाओ त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को बसरिया दूजा कह दृष्टा रसपति आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जाति भावत श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे लै समाए तुम ते भिन्न ही कुछ होए आपन सुझा जगत प्रोय जाकू प्रभु जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबदा के आ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राके दिस कोई न मारे सोम सुन सारे तीर्थ जब कहाँ को जाए।

मन इंद्र विश्वास कर मनिया करण हर नानक गजाने जन लागे के ना तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बनिया ही हुकम बुझ परम पद फाए ते प्रणय विचार जाके मन सरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदर पूजे गुर के पै लोक सुखे पर लोक सुहै ले नानक हर पवा पे मेले सत्संग मिल करो आनंद गुण का पर प्रमाण अंदर आनंद करो विचार दृढ़ो देखा करो उदार अमृत बचन रखे गुण का प्रांतरण कह स्वभाव आठ पैर पर मिटे दे आठ पैर प्रापी को मिटे के अनुसेंदे सुनो उपदेश हृदय साव मन चेरा गुरु पाव हल पल तुल सुहा राम नाम त्रुधार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन विशेष दिशाज प्रिखिया मन ता नाम चोली बुलाए दुख दर्द मन दे बो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर कह नि वेखे तुम्हारी काटे रकम माए नान बहु नाम जाए तिस्ते दूर कहाँ को जावर राखण हार त्याय निर्भज पै सकल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस पर राखे दिनाई दुख नाम जप मनो सोख चिंता जय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार श्री उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मतपुरी अमर जाके दृष्ट दर्शन पे दुर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा सेव पुरंतर जामी

सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और

आगे फला इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सब पीको, मोग्रह में मनते तनते सिर लाओ।